0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 马里小尾巴。
1: 那包错八口，那个大，对家嘞，他们可能要压过个老了没？人吃的包开，那副面个味拉好，他们那么阿他们味吃的怕那年嘞？那副把那面个味来着压个压白起码味。中国共产党嘞，政府好家提家味起码好。多次海来的大来阿提门瓦些可诺，奥尼奥哈的可给的可包下楼，的怕卡亚罗里路拖拉机的去维阿耶布，的怕来不也好也的阿切修，乌塔乌追古不也好也阿普阿蒙蒙的诺夫巴纳明格，只的去卡的靠给嘎嘎不也巴埃阿蒙维尤。ते खालीगा लोदी याको कापोपु ते खालीगा लोली खो जाख छिक खो होदु गाकावियु ओहोको योखु छिदिखु प्योवि शावि निहाथा हाले छिमवे कामखो तिनजो नानी यामी तेयाते कावि तिजो नाकेसी प्योशानि हा नेगु यागु फ्रीलो